0: New psychoactive substances are synthetic substances manufactured in the clandestine laboratories.
1: They are running in very remote places, places which are not easily traceable in jungle areas, forest areas. So very difficult to detect also.
2: In a shrubby place wherein it is hidden by all the shrubs, you set up some factory in some such area.
3: Then the network tha, kuch bhi nahi, one way road. Means koi aayega to bhi pata chalega, koi jayega to bhi pata chalega. Aisi jagah main gaya tha. Ye basically sab jungalon ke beech mein hota hai, kyunki iski jo smell hoti hai wo 2-3 kilometer, 2-3 kilometer tak dur tak jayegi to pata chal jayega kuch chemicals hai, kuch ban raha hai. Aaju baju tabele hote hai. Shit. तबेले में स्मेल मर जाती है तो ये लोग वहाँ ही प्रोसेस करते हैं.
1: दिस ट्रेंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेफेड्रोन विद द क्लैंडेस्टाइन लेबोरेटरी हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड.
0: द इमर्जेंस ऑफ एमपीएस हैज बिकम अ ग्लोबल फेनोमेनन एंड आल्सो पोसेस सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस.

0: NPS means new psychoactive substance, which are mind-altering substances. Mefedrone internationally is an NPS. I will take you through the East Africa, wherein there is a leaf which is called khat leaves. So it is chewed. It has some active components which alters the mind of the person. It's a plant-based substance. That mimic is found in mefedrone. The kick which somebody gets, or the high which somebody gets by chewing this, can be directly related to mefedrone. Mefedrone is clandestinely manufactured. There have been plenty of cases of mefedrone factory bust.
1: मेफेड्रॉन मुंबई में ये लोग इसको चाची बोलते हैं तो वो बेचते हुए
0: मेफेड्रॉन एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोकीन सो इफ समबडी डजंट हैव द वेयरविथऑल टू बाय कोकीन ही विल गो इन फॉर मेफेड्रॉन चीप व्हेन कंपेयर्ड टू कोकीन
1: कोकीन अच्छे में अच्छा 15,000 तक भी जाता है और मेफेड्रॉन अच्छे में अच्छा 1500 रुपये एक ग्राम '18 में पकड़ाया था 30 ग्राम मेफेड्रॉन के साथ तो पता चला कि पुलिस ने हमको कहा आपको रहना है हम आपको छोड़ देंगे आगे का इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बस तो उसके बाद फिर मैं इन्फॉर्मेशन की लाइन में आया 7 ईयर्स से 7 साल से इन्फॉर्मेशन तो 7 साल से 7 साल में मोस्टली ज़्यादा करके मेफेड्रॉन इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैं कर लेता हूँ कंज्यूम मेफेड्रॉन तभी हमको वो लोग को भी हम पे ट्रस्ट आएगा और हमको उन पर ट्रस्ट हमको ट्रस्ट बनाना पड़ता है जो मुझे कमर्शियल दे सकता है 52 ग्राम्स 90% चांस है वो मुझे मिलाएगा 90% मुझसे मिल के उसे आगे का सोच लेंगे क्या भाई तुम कितना दे सकते हो मेरे को ज़्यादा लगता है मेरे को 1-2 kg लगता है इफ़ एग्री हुआ लेके उनका सोच करेंगे साहब ये एग्री है देने के लिए ऐसा करके हम इंफॉर्मेशन लेते और फिर आगे तक के 6 मंथ 3 मंथ लगता है ये को होमवर्क करना होमवर्क
0: कोकेन इज इलीगल मेफेड्रोन इज ऑल्सो इलीगल देयर इज नो डाउट अबाउट इट बट देयर इज मशरूमिंग ऑफ clandestine labs.
2: I think 3-4 years back, hardly 1 or 2 seizures in a year. But now we can see that 25-30 seizures are taking place.

0: Take the case of Wardha, the latest one. Shabbi place where 60 kilometers from Wardha is a place where the entire setup was made. The DRA made a seizure of 128 kilos of mephedrone. Clandestine bursts have happened in Vapi. It has happened in Surat. It has happened in Nasik. It has happened in Pune. It has happened in Valsad. And you name it. I'm just focusing on the western part. So different labs have been set up in different parts of the country. There is a demand. See, if there is no demand, there would be no supply. Why would you set up a tea shop in a place where people are coffee lovers? As far as India is concerned, mephedrone has a huge, huge consumption.
1: मैं खुद गया हूँ उसके अंदर बनते हुए देखा हूँ सब A to Z. तो एस्ट्रोनॉट जैसा सूट पूरा ऊपर से नीचे सूट कवर्ड फुल कवर्ड. इससे जरा भी गलती होगी एक्सीडेंट हो जाएगा. बॉयलर भी सब ग्लास के होते हैं. जब भी तो कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है क्या उनके ऊपर कुछ भी हो गरम गरम हीट लिक्विड कुछ भी इन पे ना आए और जरा से में पूरा खराब भी हो जाता है जल भी जाता है. 36 आवर्स में स्टार्टिंग का पूरा बन जाएगा फिर इसको फिल्टर करेंगे. जैसे हम ड्रिंक में वोड का होता है जितना फिल्टर करा हुआ होगा उतना महंगा होगा क्योंकि वो केमिकल 3 दिन 72 आवर्स लगता है बनने के लिए प्रॉपर 4 बार प्रोसेस होता है. मैम ये है जिससे मेफेडोन पूरा बनता है ये लिखा हुआ है 8 इंग्रेडिएंट्स है. नहीं ये लोग जो जा लैब में बनाते हैं केमिकल का रूम भी डिफरेंट होता है जैसे अभी यहाँ बनाना है तो केमिकल सब बाजू में रखे रहेंगे मैं वहाँ से कैरी करके लेके आके यहाँ सब करूँगा. जैसे आपको मैंने अभी फोटोज दिखाया था उस पर सब पे आगे अमाउंट लिखा हुआ है कितना किलो क्या क्या लगेगा क्या

0: केमिकल लेना बहुत इजी है, केमिकल तो ऐसे आज ऑर्डर करूँगा कल आ जाएगा। जिनकी केमिकल की फैक्ट्री है उनके पास लाइसेंस है और उनको लाइसेंस ओनर को ही देना लीगल है वो। इफ़ 10 रुपये का केमिकल है तो मैं आपको 1 का 3 ऑफ़र करूँगा, 4 ऑफ़र करूँगा, 5 भी ऑफ़र कर दूँगा। अब आप पहले ना बोलोगे, बाद में सोच के चल ठीक है बोले ले ही रहे करके क्या है, तो आप केमिकल तो मुझे प्रोवाइड कर दोगे।
1: So what we are doing, this awareness campaign,

0: There is a new trend by the traffickers actually. They circumvent this whole process of control mechanism. They are just going by the N minus one, which means just one stage before the final. Because that is a different molecule, different structure. If we brought this one particular chemical in under control, they will go N minus one, N minus two, and then one more back. So if we start controlling every chemical, then we'll end up controlling water also.
1: So think of making a drug like following a recipe with several stages. If the final drug is the last stage, then N minus one is the precursors that need one more chemical step to become the final drug. And N minus two needs two steps.
2: So chemist is an integral part of that. The chemist have a huge role to play. So without the chemist, the factory cannot function because he is the backbone of the factory. It is the chemist who would be running the show.
3: डॉक्टर हम उन्हें कहते हैं जो केमिस्ट्री की इनको पूरी नॉलेज होती है या तो हम बोल देते बिरयानी बनाने वाले तो जो बिरयानी बना रहे अब हर जगह की बिरयानी अलग होती है कहीं ना कहीं तो उससे कुछ ना कुछ मिस हो गई एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटा कुछ फ्लेम फास्ट हो गई जो बॉयलर की फ्लेम ज़रा सी फास्ट हो गई एक परसेंट का फर्क आएगा ही आएगा आता ही है मैं हज़ारों डॉक्टर से मिल चुका हूँ यहाँ तक कि जेलों में भी मिला हूँ मैं वो लोग को मैंने पूछा भी क्वेश्चन भी किया है बोले हो ही जाता है बोले वो लोग को भी कंज्यूम करते वो लोग तभी उनका माइंड शार्प होता है तब वो बनाते खड़े देखे बहुत ना के बरोबर रेयरली डॉक्टर्स हो गए जो कंज्यूम नहीं करते बाकी तो सब कंज्यूम करते ही है
2: सो दे हैव इन डेप्थ नॉलेज समबडी हु हैज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री दे वुड बी रोप्ड इन इट्स नॉट नेसेसरीली केमिस्ट बाय दिस वन बट ही वुड हैव द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल इन सम ऑफ द केसेस बुक्ड इन वापी एंड अंकलेश्वर इट इज द केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड ओस्मानिया दे हैव बीन कॉट
1: It's very important to say chemistry itself is not designed to produce illegal drugs. The same chemistry was developed for legitimate research and industry that are crucial to our society's well-being. The harm comes from misuse, not from the science. Many of these molecules didn't start as illegal drugs. Some were first created in legitimate labs as research tools to help scientists to study how our brain works. The problem is that once the basic ideas and structures become known, they can be copied and misused to make new illegal drugs.
4: Dealing with MPS has several challenges. First one is the detection, then enforcement. Heroin and meth